0: हरे कृष्ण जप्दै कता हिँड्नु भयो बुवा?
1: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो। त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
2: हो, अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गुटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने, आरसिटी, डेन्टल इम्प्लान्ट, दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
3: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत, मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
4: थप जानकारीका लागि हरे कृष्ण डेन्टल प्राली, रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक, एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा। निर्देशक श्याम कुमार बस्याल, 98510 38135।
5: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
6: सही काला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनौले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
3: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
5: पुनश्च सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
6: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
2: के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
7: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
2: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पुरा गर्दैछौँ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पिटी र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
7: थप जानकारीका लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, रामग्राम 5 परासी अदालतको ठिक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 98510 38135।
8: ओहो, कता हो दाइ, रन के रे हिन्नु भएको छ नि?
3: हेर न भाइ, घर बनाउन लागेको सामान जहाँ गयो त्यही महँगो, म त दिक्क परे। यसो कबाडतिर सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हिँडेको।
8: ल कबाडमै कता, न्यू जयगढेस इन्टरप्राइजेस परासीमा जानुस् न, त्यहाँ त कबाड भन्दा पनि सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ।
7: हो, हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल पत्ती, पाइप, एचआर सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
2: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्।
7: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेज, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, नापी कार्यालयको ठिक अगाडि। सम्पर्क 98450 59960 र 98118 21 559।
9: अरे वाह, देखा थी, बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
10: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते वाला टाइल, मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
9: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर, रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
11: जी, हमन की यहाँ टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, टोटी, बाथरूम फिटिंग, किचन डेकोरेशन, मोटर, पानी टैंकी, शावर, मिक्सर, सीसा, टेबल टॉप, कम्बोर्ड सीट, सीपीवीसी, पीवीसी पाइप लगायत तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
12: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 91 20 42 52 31।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिर बाबा बर्द गोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्द गोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्द गोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्द गोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्द गोरिया जरूर चलल जा।

0: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तीन तीन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
1: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
0: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
2: जता दौडिए पनि त्यस्तै, यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्यो। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
3: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
0: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
2: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
0: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 078-520-881।
2: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 078-590-588।
4: जो कोही को इच्छा सुन्दर घरको लागि सुन्दर रंग।
5: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेन्ट्स।
4: इन्डिगो पेन्ट्सको आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिङ कन्सर्न, कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ, रामग्राम 3 परासी।
5: इन्डिगोको मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रङ रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
4: इन्डिगो पेन्ट्स, सदा बसन्तम।
6: घरलाई कस्तो रङ सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
2: त्यति मात्रै कहाँ हो र, हामी कहाँ पाइप फिटिङ, प्लम्बिङका सबै सामान, सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
5: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
2: परासीमा घर रङरोगन, प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्य पाइने एकमात्र स्थान
7: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न, कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ, रामग्राम 3 परासी, पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
6: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी, सम्पर्क 078-520-747 र 98-570-46-747।
8: हत्तेरीका लास्टे गर्मी लगत यार, लगत बिना फ्रिज या कूलर के नै रह सकै। इहिमे मोबाइलो फुट गेल बा, लेकिन
3: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
9: जी हां, धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
10: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी, बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98-470-22020 और 98-015-22020।
11: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने।
0: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
11: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
12: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आर सेन्टर पोइन्ट।
0: सम्पर्क आर सेन्टर पोइन्ट राम 11 जमुआर हुलास अटोक्राफको ठिक अगाडि, मोबाइल 98576 र 98044000067।
13: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
9: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता है सत साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
13: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
3: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी, घंटा घर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 98671 45 737।
14: बस, ट्रक, कार होस् वा मोटर बाइक, टायर सधैँ सिएटकै।
6: हजुर, जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स भूमहिमा बलियो, टिकाउ अनि बढी माइलेज भएको सिएट टायर, इन्भर्टर, ब्याट्रीहरू साथै आकर्षक सटिङ सुटिङका लागि पनि एकै ठाउँ,
14: जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स, सुनवल 12 भूमहिलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मोबाइल 98570 45 155।
15: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध, आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौँ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौँ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।

0: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूं जहुक मन नहीं करला।
1: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहां विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
0: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559544586।
4: ओहो, कस्तो सफा र चमकिलो कपडा, पक्कै पनि तिमीले गाई छाप सरफले नै धोएको हुनुपर्छ।
5: हो त, आजभोलि गाउँ सहर जता ततै गाई छाप सरफ नै प्रयोग गर्छन्। साथै यसको खरिदमा साइकल उपहारको पनि व्यवस्था छ। अनि सुन्नुस् त, कपडाको दाग र धब्बा हटाउनलाई त एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वास प्रयोग गर्नुपर्छ नि। जसको खरिदमा आइफोन उपहारको पनि व्यवस्था छ, विचार गर्नुहोस् है।
4: हजुर, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरी नेपाली हुनुमा गर्व गरौं। उत्पादक साफी सरफ उद्योग, मायादेवी गाउँपालिका 1, पाकडी कपिलवस्तु। सम्पर्क 9826448200।
0: सुनत बाड़ा हो, ये जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का।
1: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता, अदानी को साफ से नाई फरियाता।
6: हई देखा, तू सब के ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लम्बा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल पोरासी में जाके चेक करवाला।
2: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
3: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।
7: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि ₹1,00,000 दुर्घटना बीमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 0785201024 र 9842799011 सम्पर्क गर्नुहोला।
8: के भएको यस्तो, नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
9: इसुमी, पहिला त मोबाइल कम चलाऊ, दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या।
8: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
9: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
10: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरवा आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
11: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
10: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 9819069017 र 9695434254।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर इहे भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: ए चाचा देखा न, हमार आखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौकता।
1: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा। आखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
2: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
3: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मास उभरल टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
0: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 9867228015 और 9857222।
4: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
5: हाँ, घरवा तो बढ़िया बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
4: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
6: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट CPVC PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
3: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 91 20 42 52 31।
7: नमस्कार, मैं लोकदोरी गायिका।

0: दिन कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
1: ला सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
0: ल ल केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
2: हजुर, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड, प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
3: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 077-520-510, मोबाइल 98-570-80-510।
4: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
5: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव, हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी, हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण, हरेक शनिबार
6: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी, हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा, हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन, हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे, हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाट जोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
7: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
4: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक, रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 078-590-699 र मोबाइल 98-570-47-282।
1: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98-570-23-031।
8: ओहो, कता हो दाई, रन किएर हिँड्नु भएको छ नि?
9: हेर न भाइ, घर बनाउन लागेको सामान जहाँ गयो त्यही महँगो, म त दिक्क परे। यसो कबाडतिर सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हिँडेको।
8: ल कबाडमै कता, न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस परासीमा जानुस् न, त्यहाँ त कबाड भन्दा पनि सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ।
10: हो, हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल पत्ती, पाइप, HR सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
8: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्।
10: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, नापी कार्यालयको ठिक अगाडि। सम्पर्क 98-450-59-960 र 98-118-21-559।
9: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
1: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई-रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
9: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
11: परासी क्षेत्र में पहिला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी।
12: चौबीसों घंटा इमरजेंसी सेवा देहता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मेसिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
13: इतने भर नहीं सब साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
9: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
14: या जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप्प लाइन जान्छ एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा
15: ठिकै भन्यौ अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि के को चिन्ता
16: हजुर जहाँ तपाईँले गिजर हिटर इन्भर्टर आइरन राइस कुकर पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ
15: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौ
17: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर रामग्राम 5 परासी थाना रोड ग्लोबल कम्प्युटरको ठिक अगाडि प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता मोबाइल 9815640092 र 9828336460
18: सुनत बाड़ा हो है टेढ़-मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूं जहुक मन नहीं करला
19: है देखा अब लाज कौन बात की हो चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में जहां विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला
9: जी हाँ ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार डेंटल इम्प्लांट दांत के सफाई कॉस्मेटिक फिलिंग मुंह कम खुले वाला समस्या बच्चा के दांत के इलाज डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा
13: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी दांत बनवाए के बाद 1200 दांत सफाई करे खातिर 160 दांत लगवाए के 100 दांत निकाले के 160 दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निशुल्क के व्यवस्था याद रहे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निशुल्क इलाज
18: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हर जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर मेन रोड ठूठी बारी सहारा बैंक के नीचे मोबाइल नंबर 9559574400 और 9559544536
1: पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्धको एसपीपी खोप लगाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको जरुरी सूचना यही भाद्र 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म नवलपरासीमा रहेका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 6 अध्ययनरत छात्राहरूलाई विद्यालयमा र विद्यालय बाहिरका 10 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एसपीपी खोप सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सरकार वालाहरू सबैले खोप अभियानलाई सहयोग गरी यो कार्यक्रम सफल बनाउन अनुरोध गरिन्छ खोप निशुल्क पाइन्छ खोप सुरक्षित छ खोपले जीवन रक्षा गर्दछ अनुरोधक स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी बर्दगार सुस्ता पश्चिम
13: अब तपाईँको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाईँ भौतारिनु पर्दैन मात्र एक कल फोन राम बच्चन सेनेटरीलाई गर्नुभयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौँ
20: हाम्रा सेवाहरू
17: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लिनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने
20: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने
17: थप जानकारीका लागि सम्पर्क राम बच्चन सेनेटरी रामग्राम 1 परासी
21: सम्पर्क मोबाइल 9806970482 9800705713 र 9864995513
22: नमस्कार म लोकदोरी गायिका

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45 860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
0: चला, इतना बढ़िया सोच तुहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
2: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी सावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
3: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
4: ओ माय गॉड, इत अभी वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा फिर पड़क गई।
1: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
3: जी, हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन MRF सीएट मैक्सिस टीवीएस रालको डनलप जेके गुड ईयर लगाए के टायर ट्यूब रिम स्टील वार्ड पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
2: थोक एवं फुटकर सामान की आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस मेन रोड ठूठीवारी प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त। व्हाट्सएप नंबर 9118-51-09-81।
5: सुनत बाड़ा हो, है टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
1: है देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
6: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
7: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
3: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर मेन रोड ठूठी बारी सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9569-74-74-00 और 9569-44-85-36।
8: म सानै उमेरमा बेचिए, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर, तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ, यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र, खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
9: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे, झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति, जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु। दिदी,
10: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
11: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5,00,000 जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
10: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
12: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
13: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
12: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य आवर डटर्स इन्टरनेशनल।
14: बा, के भयो र किन रुनु भएको?
15: कहाँ रोएको र बुहारी, आँखाबाट त्यसै आँसु बगिरहन्छ, घाममा हेर्नै सक्दिन, मासु पलाछ भन्छन्, खै के भयो भयो।
16: मम्मी मलाई पनि बुकेने बित्तिकै टाउको दुख्छ।
14: ए भनेपछि दुवैजनालाई आँखाको समस्या भएछ। ल बा हिँडिहाल्नु परासीको भगवती नेत्रालयमा आँखाको उपचार गर्न।
17: हजुर, परासीमा पहिलो पटक दृष्टि रोग विशेषज्ञद्वारा आँखा सेवा सञ्चालन।
14: हाम्रा सेवाहरू
17: मोतियाबिन्दु, आँखामा मासु पलाएको, आँसु नली बन्द भएको, आँखामा फुलो परेको, घाममा आँखा हेर्न नमिल्ने, टेढो आँखा भिजन थेरापीद्वारा सोझो बनाउने, अल्छी आँखाको उपचार, कम्प्युटर प्रविधिद्वारा आँखा जाँच गरी पावर, बिना पावर चस्मा तुरुन्तै तयार, सम्पूर्ण किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्स, सबै उमेर समूहका लागि ब्रान्डेड चस्मा, कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटप टिभी लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोगकर्ताका लागि विशेष किसिमका चस्मा उपलब्ध छ।
14: सम्पर्क भगवती नेत्रालय रामगराम 3 परासी सुनवल रोड आँखा अस्पतालको ठिक अगाडि। मोबाइल 9862728015 र 9857022215।
18: नमस्ते म नरहरि प्रेमी, मेरो रेडियो तपाईँको रेडियो अनि हामी सबैको रेडियो, रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: सितारों की मस्ती, संगीत के नशा,
2: आपके नचाए झुमाए वाला गीत।
3: बुलेट पहुँचीजा, बुलेट पहुँचीजा, ले चले घुमावे, बुलेट पहुँचीजा,
2: आपके दिल बहलाए वाला गीत।
4: जो हस हस के सनम मुझसे बात करती है,
5: फरक दिन फरक प्रस्तुति।
1: जी हाँ संगनिए, भोजपुरी गीत संगीत के अनुपम
6: उपहार।
7: सुने के न भुलाएल जे कार्यक्रम गीत बहार।

0: सम्पूर्ण नमस्ते नमस्कार कार्यक्रम गीत बहार के इंतजार बैठे लो सब प्रिय श्रोता दोस्तों दिल से नमस्कार के साथ में हमको उपस्थित हो चुकल बानी जहाँ शनिचर के दिन में आप सबके आवाज़ में अपन सारी सुनावल जाए और आप उनके संगत भी संपूर्ण मन के करावल जाइए। हम कार्यक्रम संचालक सुरेश यादव उपस्थित हो चुकल बानी तो मन के सहकर्मी संगत या मन के बीच में आना
1: अपसना खातून आप सबके बीच में उपस्थित हो गए बानी जा फोन डायल जरूर कर ले 98 2051 581। लेकिन कार्यक्रम में रही क्या उससे पहले हमन के एठो गीत सुनल जाए
0: फॉलो करके वहाँ से भी सुन सकल जाए। तभी कार्यक्रम में हमके कार्यक्रम के स्वागत स्वरूप गीत बताओ जाए और साथ में फिर से आप लोग के बीच में आप लोग के सारी लेख खातिर हमके उपस्थित होकर जाए।

0: हाँ हमन के गीत के साथ में आप लोग के बीच में हमको उपस्थित हो चुके हैं। जब पश्चिम नवलपरासी के पहला रेडियो स्टेशन है आपके मल्ल बाट बहुत लंबा समय से कार्यक्रम गीत बाहर चलता आ रहा बटा हमन के 11 बजे से 12 बजे तक हर एक दिन चलत बाटे। आज शनिचर के दिन में वाणिज्य आज के दिन में आप लोगों के शायरी सुने खातिर आए वाणिज्य आप डायल कर सकल 98210-5581 आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कर बटे आप डायल कर तब हमन के बातचीत करके मिली और संगतियन के भी याद कर सकल बिहान के दिन में आपकी आवाज़ में हमन के गीत सुना दिला अही सोमवार के दिन में आपके सवाल जवाब कर दिला मंगल के दिन में आपके क्लिप सुना के आपके पसंद के गीत भी बताओ दिला और कल तब बुध के दिन में भी हमन के आपके बीच में आवल विफेक दिन में भी आवल कहीं भी आएल निजा आज आपके डायल करे पड़ी मोबाइल नंबर 98210-5581 आपके खातिर खुला कर मिली बटे
1: एकदम एकदम। और आज हमन के शनिचर के दिन है एकदम फुर्सत के समय बाटे आप सब फोन ने जरूर कर हमन के कार्यक्रम सुनत होखल जाए थे फोन डर कर 98210-5581 और हमसे बातचीत के साथ साथ अपन शायरी चुटकीला सुना सकल जाए और अपन साथी भाई लोग के समझना समर्पण कर सकल जाए
0: एकदम हमन के जमन की बात शायरी चुटकीला लेख रहा नहीं एकदम हमन के बतिया में जैसे शायरी भर जात रहा है अब पहले भी चलता रहा हमनों को बोलता रहा शायरी लेकिन अभी नवा का बाटा कि हमन के शायरी नहीं बोल जला यार से आपके मन में बाटा बहुत लंबा समय से भर हुआ कार्यक्रम विनोवा हमके जब से घटना भैया तब से हम कार्यक्रम में नहीं होता नहीं फिर से अभी नवा जब से आए लग तब से आपके लोगों के कार्यक्रम में हमारा होता नहीं और विनोवा कर हमें फोन लाइन में कोई संगति आज करवाना हेलो नमस्कार
1: हेलो नमस्ते
2: नमस्कार
1: नमस्ते नमस्कार
0: कहाँ से क्या नमस्कार
2: महेंद्र
0: चौधरी के क्या हाल खबर खाना खाए बैठे बनी जा और सुना दे दंगे और क्या खबर
2: सब ठीक बा सर
0: सब ठीक बा नहीं अब शायरी सुना देता तब
2: सुनाओ सही सर
0: सुना
2: नोट समझ के तोहफे दहली वो पाई निकल नोट समझ के तोहफे दहली वो पाई निकल और जोता समझ के तोहे लागे देली वो सफाई निकल और अब की लड़की देख के शादी कर चली वो दुई नहीं कर माई निकल
0: बाप रे बाप एकदम नहीं ये तो बात सही हो जैसे अब घटना कब हो जाला क्यों के कुछ मालूम नहीं हो पावला हो जाए कैसे गुजारा हुई कैसे का हुई केहू को मालूम ना हो पाला जैसे हमारे साथे भी भेल वैसन घटना आए वाला दिन में फिर सहभागिता मिली अब की पारी बजे वाला गीत मार्फत के सुनावे के चाहल जाए
2: सबसे पहले आप दोनों मिलन के सर और शंभू सर के और वहाँ डॉक्टर राय प्रकाश चौधरी जनार्दन चौधरी विनोद कबियार जी तीनक जी पार्वती जी दुद्दू बानिया और सराव सुमान ओम कुमारी चौधरी अर्तमान चौधरी सिकंदर चौधरी कन्हैया यादव केवल चौधरी नील कुमार चौधरी धर्मेंद्र पासवान जनवधवा से मीना कुमारी कंवर जितना सुन के साथ देते ना सबके सर
1: एकदम आए वाले दिन में जरूर बातचीत हुई चुड़ैल नमस्ते
2: नमस्ते
0: हमन के महेंद्र चौधरी दंगक संगतिया कार्यक्रम में सहभागिता दिलाना अपन शायरी सुना के जा चुके अपन संगतिया लोन के भी याद करके जा चुके आप भी आ सकते हैं 98210-5581 आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला के लिए बटे हमन के पश्चिम नवलपरासी के ही पहला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो परासी आप यदि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 MHz से बाहर बन जाता हमन के ऑनलाइन मार्फत सुन सकल जाए जौन के हमन के ऑनलाइन बाटे www.radioparasi.com लॉगिन करके और फेसबुक में जाए तो फेसबुक में जाके आपके सर्च करके रेडियो परासी नेपाली में वहाँ से भी सुन सकल जाए लाइक कर दे फॉलो कर दे और वहाँ से भी सुन सकल जाए अपन कमेंट भी कर दे आप आज के दिन में हमन के सहभागिता आपके सारी चुटकिया लिख रहे थे अभी सुनो तो बढ़ जा और आज के संगतियन के भी याद करवा दो बानी जा आप खातिर हर एक दिन 11 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम विध बाहर चलता आ रहा बटे आई पश्चिम नवलपरासी के ही बहुत लंबा समय से स्थापना काल से ही कार्यक्रम चलता आ रहा बटे आपके मन में बटे बहुत लंबा समय से हर एक दिन हर एक प्रकार के हमन की गतिविधि लेकर आवत रहा आज हमन के बाटे बिहान अब शनिचर हो जाए सोमवार के जो उनके बाटे तीज भी होके मेला भी होके आपके बाबा बरदगोरिया भी मेला लगा ला आप वहाँ भी जे नवलपरासी के आसपास बाटे जे नजदीक बाटे वहाँ भी जाके आनंद ले सकल कार्यक्रम में सहभागिता होके भजन के गीत उत सुना के गीत गा के भी सहभागिता जना सकल 98210-5581 आपके खातिर खुला के लिए बटे
1: एकदम एकदम और फुर्सत के समय होके आप सब रेडियो सुनत होकल देते जरूर फोन डायल कर ले 98210-5581 आप सबके अगोरा में हमन के बैठल बड़ी जा आप सबसे बातचीत के क्रम में हमन के आप सबसे शायरी चुटकीला सुनल जला आप सभी मनोरंजन कराए खातिर गीत बाहर प्रोग्राम लेके आवल जला ये कहत फोन लाइन में कोनो संगरिया चुकल बानी
0: हेलो नमस्कार
1: नमस्ते नमस्कार
0: क्या हाल खबर क्या बात चिनक जी क्या हाल खबर
3: एकदम बढ़िया बात
0: परासी के भी हाल खबर ठीक बाट पानी उनी भी नहीं हल्का 4 बजे 4:30 बजे पानी पड़त रहल ओहर के बता दे हल्ला
2: यहाँ के तो मौसम सुबेरे से एकदम घाम बहुत ज्यादा पानी नहीं कुछ ना
0: बा
2: यार पानी ना बसल बिहान से
0: चलो तो ठीक बा
1: खान पीन हो गया आपके चिनक जी
2: जी खान पीन हो गया बा
1: खान पीन हो गया बाटे आज आपके सहभागिता में कौन से सुने के मिली
2: बताइए बा
1: सुना दे
2: कहल जाने आखिरी खत तुम तो लिखता हूँ हर रिश्ता मिटा दो जाने मन आखिरी खत तुम तो लिखता हूँ हर रिश्ता मिटा दो जाने मन और मैं हर रिश्ता भूल चुका हूँ मेरे खत को जला दो जाने मन
0: चल तो ठीक है नहीं अब देखिए मन पसंद कर जाता देखे याद करावल जाता याद भी वो भी आए वाला दिन में करबे करी आपके मालूम होगी और अपन संगतिया लोन के याद कर सकल जबकि परिभाषा वाला गीत मार्फत के सुनावे के चाह जाए
2: सबसे पहले तो आप दोनों जना समझा थे फर्स्ट जाना दंगिया से महेंद्र चौधरी जी उनका के उनका घर परिवार के इलोरी से माना डॉक्टर राजीव प्रकाश चौधरी जी गोबरैया से मुन्ना ठाकुर जी बंदेविया से ओम नारायण चौधरी जी होम कुमारी चौधरी जी वानी पंपअप से राधेश्वरी चौधरी 12 वर्ष से विनोद परियार जी शमसुद्दीन अंसारी जी नरेश कुशवाहा जी बलिराम दास जी और 200 वर्ष से माना गोलू जी जनार्दन चौधरी हरकट्टा से और जितना दोस्त मित्र कार्यक्रम सुंदर यार सब दोस्त लोग याद कर रहे
1: एकदम आए वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई चलो नमस्ते
2: नमस्ते
0: हमन के चीनक हरिजन जोन की बेलाटारी संगतिया कार्यक्रम में सहभागिता दिला ना अपन संगतिया लोन के भी याद कही की जा चुका माना अपन सारी भी सुना के विनोद कर में फोन लाने को संगतिया आ चुका माना हेलो नमस्कार
3: नमस्ते सर
1: नमस्ते नमस्कार कहाँ से क्या नमस्कार
0: राधेश्वरी चौधरी बहुत दिन के बाद सहभागिता मिलल जब से हमारा अलवानी आज पहला बेर सहभागिता मिलल बात है चल तो ठीक बा बाप राधेश्वरी जी के हाल खबर एकदम ठीक रहनी घटना भेल ऐसे है जनता बाड़ी जा के हो जाए केहू मालूम नहीं रहा नहीं पंपा और पूर के हाल खबर सुना दल जाऊरी
3: सब बढ़िया बाटे सर ऐसे जकता
0: खान पीन हो गई हाँ
3: सर खाना न हो गई लनिया सबके
0: एकदम हम लोग हो गए बाटे और कथी सुनावल जाए जो
3: सर अब सुनावल जा अब ये
0: सुनावल जा
3: शारदा भवानी जी के जेकर पर कृपा लग जाला शारदा भवानी जी के जेकर पर कृपा लग जाला गुणी और ज्ञानी सहलाला सहलाला सुर में देकर में समा जानी माई सुर सरगम के लिए आता हो जाला नमस्ते सर हो गए
0: एकदम चल ठीक बा आए वाला दिन में सहभागिता फिर से मिली आपके
1: ये सारी मार्फत अपन साथी संगे लोगों के समझ सकल जाए
3: सबसे पहले आप दिन जन के और ये सुनी का अंदर से परवीन बारे जाओ हाथ के मेघराज गौतम दादी के विकास अधिकारी दादी के संपूर्ण रेडियो परासी के संलब्धिता होकर नमस्ते नमस्ते
1: वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई चलो नमस्ते हमन के राधेश्वरी चौधरी जी पंपापुर से सहभागिता जाना है कि अपन सहभागिता में एक छोट मीठ शायरी सुना के जा चुकल बाड़ी फोन डायल जरूर करल जाए 98251581 और हमन से बातचीत के साथ साथ अपन साथी संग्रह लोगन के समझना समर्पण कर सकल जाए
0: और हमन के कल देना सारी चुटकीला लेख रतना राधेश्वरी जी के जब से हम आए बनी कार्यक्रम चला तो लगभग 5-6 दिन हो गए आज पहली बेर सहभागिता मिलल अपन शायरी भी सुना गए अपन संगतिया लोन के भी याद कही गई ना आपके मालूम बट है बहुत लंबा समय से रेडियो परासी पश्चिम नवल परासी के ही पहला रेडियो स्टेशन है आपके मालूम बट है और दूटो भी रेडियो बट है आपके मालूम बट है सामुदायिक रेडियो प्राइवेट रेडियो भी बट है अभी नौकर में हमन के फोन लाने को संगत आज कल होना हेलो नमस्कार
4: हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय श्री राम
0: नमस्कार गुड मॉर्निंग जय श्री राम कहाँ से कहकर नमस्कार
4: हम बलराम प्रसाद दास नेपाल हिंद रेडियो श्रोता संघ से भैया पारसा से बोल रहा बनी
0: बलराम प्रसाद दास जी के काबा हाल खबर
4: एकदम अच्छा बा बढ़िया बा अपन हाल खबर सुना दी है रेडियो पर आसी
0: समय एकदम और हाल खबर ठीक बा रेडियो के एकदम ऐसा चलता है बा आए वाला दिन में भी चलबे करी के कुछ हो जाता है रेडियो संचालन रहबे करी कथी सुनाओ ले आज
5: बाटेको सायरी बाटे
0: सुरु कर जा।
4: ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं।
0: एकदम
5: ये बाटे।
0: चलो आपके पारी बजे वाला गीत मार्फत अपन संगतियों के सुनावे के चाह ले।
4: हाँ विशेष करके तो अपने के समझे के चाह याद करे के चाह रेडियो परासी एफएम के समष्टि निन परिवार की उसी कहल जाए तो हमने के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े हमी संस्था के योगेंद्र चौधरी उस समय कहा जाए तो हम उनकी एकांश श्रोता संघ के अध्यक्ष बनाए पंडियार ब्रीज चौधरी शिवलाल चौधरी संतोष पासवान सन चौधरी सब्दीन अंसारी हिमांचल चौधरी केदार चौधरी उस समय हमने आदरणीय नौन पराथी के संगठीय लोग बढ़े नील कुमार चौधरी सीता चौधरी प्रकाश चौधरी गुडू बनिया चिनक जी पार्वती जी गुंजे श्री मुखिया जी शेरबहादुर चौधरी ठगनी चौधरी डॉक्टर राम होम कुमार चौधरी राधा राधेश्वरी चौधरी रेडियो प्रासी जितना श्रोतागण सुन रहा हूँ बात तमाम श्रोतागण के सुना दो।
1: आए वाले दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई चुनाव। नमस्ते
4: नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग
1: नमस्ते नमस्कार।
0: हमन के बलराम प्रसाद दास 12 प्रसाद से फोन के लाना विनोवा के क्रम में आपके क्रम में आपके खातिर एक गीत बजा दे। गीत के साथ में व्यवसायिक विश्राम ले दे। विश्राम के बाद फिर से आप उनके बीच में हमन के उपस्थित होकर ले। तब तक आप डायल करते रह जाए मोबाइल नंबर 9821551581 और आप सुनते रहिए आपके अपने ही सामुदायिक रेडियो प्रासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़ की प्रस्तुति भोजपुरी भाषा कार्यक्रम गीत बारह विनोद कर में गीत सुना होगा। गीत सुन ले गीत के बाद में एक छोटे व्यवसायिक विश्राम। विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गए। आप भी आ सकते 9821551581 आपके खातिर खुला कर लिया बटा। आपके बहुत लंबा समय से कार्यक्रम चलता आ रहा बटा हर एक दिन 11 से 12 तक। हम बीच में अब ऐसे हो शनिचर के दिन पहले चलावत रहिए बीच में अब ऐसे हो सहकर्मी संगति हमारे जितेंद्र दानंद जी अभिनवा बीच में कहीं बाहर भले के नाते से हमके फोन कर जानकारी के ना तो अभिनवा हमके आए पड़ल। आपके मालूम बैठे पहले भी बीफे सुख शनिचर चलावत रहिए अभिनवा बुद्ध बीफे सुख चलावता नहीं आपके मालूम बैठे। और हर एक दिन हमन के फरक फरक विषय वस्तु के साथ में फरक फरक श्रोता फरक फरक संगति हमन के कार्यक्रम चलाओ जला। आपके मालूम बैठे 9821551581 आपके खातिर खुला कर बढ़ रहा है। और कौन संगति आप फोन लाइन में नया रहा होना चला जाए गीत बदल गीत के साथ में कुछ देर व्यवसायिक विश्राम। विश्राम के बाद फिर से आप लोग के बीच में हमन के उपस्थित होबा के जाइए।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शोभा बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर इहे भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: का रे पुरबहिया, आज कपड़ा बड़ा साफ और चमकदार लगता, कौने सरफ से फिचले हरे?
1: काहे तोहके नाई मालूम बका, आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केहू गाय छाप सरफे लगावता, जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता, साथे कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा, जेमे आईफोन 13 उपहार के भी व्यवस्था बा।
2: जी हाँ, आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कैल जा और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जा।
3: उत्पादक साफी सरफ उद्योग, माया देवी गाँव पालिका 1 पाकड़ी कपिल वस्तु, संपर्क नंबर 98264-48200।
4: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा।
5: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। छाती, मुटु, सुगर, थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म।
6: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
7: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमील मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म।
8: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि।
7: र भैरहमा मेडिकल कलेजका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
9: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे, हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर तथा नर्मल अपरेसन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ।
4: सम्पर्क जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक रामग्राम 5 परासी, फोन 0785-20746 र मोबाइल 98470-41-100।
10: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
11: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
10: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
12: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना, नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
11: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट, रामराम 11 जमुआर, हुलास अटोक्राफको ठीक अगाडि, मोबाइल 98570-46130 र 98044-00067।
13: जयराम जी के हम नरहरी प्रेमी हरदम सुनल रहल जा अपन रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज।

0: कुछ देर व्यवसायिक विश्राम विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में मन को उपस्थित हो चुकर बानी जा मन के आज शनिचर के दिन बानी जा आज के दिन में रहकर मन के आप लोगों के सारी चुटकीला लेख रचना के साथ में आपके सुनाए पर और संगतियन के भी अपन जोन मनपसंद गीत हमन के बजावल दी तो के गीत सुनाबे के चाहते नाम भी ले सकल संगतिक समझना संपर्क भी कर सकल और मोबाइल नंबर खुला कल गए बटे 9821551581 आपके खातिर खुला कल गए बटे पश्चिम नवलप्रासी के यही पहला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो प्रासी 90.2 MHz के प्रस्तुति भोजपुरी भाषा कार्यक्रम गीत बाहर हमन के यदि आप फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 MHz से बाहर बन जाते हमन के ऑनलाइन मार्फ सुन सकल है जमन के ऑनलाइन बटे www.radioprasi.com लगने के और फेसबुक में जाए जाए तो रेडियो प्रासी नेपाली में लिखल बा वहाँ जाके लाइक करके शेयर करके फॉलो करके वहाँ से भी सुन सकल है तो हमन के आशा और विश्वास के लिए बन जाए कि आप कोनो माध्यम से हमन के सुन के साथ दिया जाता
1: एकदम। और आज हमन के शनिचर के दिन उपस्थित हो गए बड़ी जा और बिहान देखल जाए अतवार के दिन अतवार के दिन में रही के आप सबके खूबी प्रतिभा के दिन है खूबी प्रतिभा के दिन में रही के आप सब गाना गाय सकल जाए और अपन खूबी दिखा सकल जाए ऐसा नहीं कहल जाए तो सोमवार के दिन में रही के आप सबके बीच में के प्रश्न लेके आवल जाला प्रश्न के उत्तर दे के आप 100 रुपया के रिचार्ज कार्ड जीते सकल जाए वैसे नहीं देखा जाए तो मंगल के दिन में हमन के 8 क्लिप्स लेके आवल जाला वो क्लिप सुन के आप सब अपन मन पसंद के गीत वो क्लिप्स में से सुने सकल जाए ऐसे नहीं देखा जाए तो बुध के दिन में रही के आप सबसे खट्टा मीठा बातचीत के साथ साथ हमन के आप सबके बीच में रही के अपन साथी भाई लोग के भी समझ सकल जाए वैसे नहीं बीफे के दिन में रही के हमन के 10 प्रश्न लेके आवल जाला प्रश्न के उत्तर दे के उ दिन भी आप सब 100 रुपया के रिचार्ज जीत सकल जाए वैसे नहीं शुक्र के दिन है हमन के रोजाई के गीत आप सब अपन मन पसंद के गीत ओमे सुने सकल जाए और आज हमन के आप सबके मौलवी बाटे शनिचर के दिन में रही के आप सबके बीच में हमन के शायरी चुटकीला लेके आवल जाए तो सुनल जाए और आप सब अपन साथी भाई लोग के भी समझ सकल जाए देखल जाए तो फोन लाइन में कोनो संग्रिया ना आयल बानी लेकिन जरूर डायल करल जाए 9821551581 और हमन से बातचीत के साथ साथ शायरी चुटकीला भी कह सकल जाए
0: एकदम हमन के शायरी चुटकीला लेख रचना के साथ में अपन संगतिया लोगन के भी याद कर सकल जाए यदि आप डायल कर दे तब बातचीत करें कौशन में डायल कर दे नहीं कर दे तब कहाँ बातचीत हो पे नहीं हमन के बहुत लंबा समय के बाद आप लोगों के बीच में हम आयल बनी लगभग यह 500 दिन से कार्यक्रम चलावत बनी अब लगभग हफ्ता 3 दिन आ गए नहीं अगले हफ्ता भी 3 दिन आ गए नहीं अब 3 दिन हो गए अब की तो 4 दिन हो गए हमारे ख्याल से जहाँ तक लगा था कहें से कि बुध भी फिर सुख हम आवे नहीं आज शनिचर के दिन में हमन के सहकर्मी संगत जितना फोन के जानकारी कहना कि सर कहीं हम बाहर बोले के नाते से आपके जाए पर कहीं हमके जानकारी कहें तो हम आ गए बनी और आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कर गए बटे यदि आप डायल करिए तब बातचीत करके अवसर मिली 9821551581 पश्चिम नवलप्रासी के पहला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो प्रासी यदि आप हमके ऑनलाइन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 MHz से बाहर बन जाते हैं हमके ऑनलाइन जोन के बारे www.radioprasi.com लॉगिन के गूगल में जाके वहाँ से भी सुन सकल है और फेसबुक में जाके रेडियो प्रासी नेपाली में सर्च कर ले तो वहाँ से लाइक करके फॉलो करके और भी हमन के सुन सकल जाए कमेंट भी कर दे तो कमेंट जरूर हमन के जोड़ जब कमेंट बनाए कर दे तो कैसे जोड़ देने हमन के कॉल जाता है अब आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कर बटे वह मोबाइल नंबर हो बहुत लंबा समय से मोबाइल नंबर भी यूज हो रहा बटे स्टूडियो के नंबर रहा जो उनके लैंडलाइन नंबर यूज नहीं हो रहा बटे उसमें थोड़ा समस्या लेकिन आते से आपके मोबाइल नंबर 9821551581 आपके खातिर खुला कर बटे आपके मोबाइल में बटे बहुत लंबा समय से हर एक दिन 11 बजे से 12 बजे तक हमारे उपस्थित होकर आवत बाड़ी जा आज हमारे शनिचर के दिन में फुर्सत के दिन में ढेर जना से बातचीत करेगा अवसर मिला कहीं कि हम उनके शनिचर के दिन में शायरी चुटकीला लेख रचना साथ में अपन के संगतिया उनके समझना समर्पण भी कराओ देता और बिहार के दिन में आप लोगों के बीच में हमन के अतवार के दिन में आप लोगों के खूबी पर दिवा आपके आवाज़ में अपना गीत सुना दिला और सोमवार के दिन में आपके सवाल जवाब कर दिला मंगल के दिन में 8 क्लिप सुन लेके आवाज दिला क्लिप में से कै नंबर के गीत आपके सुनने का मन कर रहा आपके पसंद में बदल रहा और बुध के दिन आप लोगों के संगतिया समाधान समर्पण करवा दिला और बीफे के दिन में आप लोगों के भी हमन के कहा जाना जब उनकी सवाल जवाब कर दिला इसी शुक्र के दिन में आप लोगों के संगतिया समाधान समर्पण भी करवा दिला आज के दिन में भी हमन के आप लोगों के संगतिया समाधान समर्पण तो करे बन जाए लेकिन सारी चुटकुला लेख रचना भी सुना तो बाड़ी जा और आपके मोबाइल नंबर आपके डायल करके 9821551581 आपके खातिर खुला के लिए बटे
1: एकदम और आप सबके इंतजार में मन के बैठल बड़ी जा फोन डायल कर ले तब भी हमन से बातचीत हुए सकी और आप का कह के बैठल बड़ी जा और का करत बड़ी जा ये सब हमन से बतिया सकल जाए देखल जाए आज शनिचर के दिन होके एकदम फुर्सत के समय होके 11 से 12 बजे तक हमन के हफ्ता के 7 दिन कार्यक्रम चलत आ रहा बाटे आज हमन के शनिचर के दिन उपस्थित हो गए बड़ी जा फोन डायल जरूर करल जाए कार्यक्रम सुन के बैठल बड़ी जाते 9821551581 में अभी तक कोनो फोन लाइन में कोनो संग्रिया नहीं आयल बने लेकिन 4 जना से बातचीत हो गए बाटे हमन के आप सबके फोन के इंतजार बाटे हमन के फोन डा जरूर करल जाई। और आज देखल जाए तो घाम बर एकदम घाम कैले एकदम अच्छा मौसम बाटे, कुछ कह के बैठल बाड़ी जाते हमन के साथ बातचीत कह के मनोरंजन कर सकल जाए। ये गीत बाहर कार्यक्रम ही मनोरंजन के एठो कार्यक्रम है, आप सबसे ही बातचीत कह के हमन के मनोरंजन लिहल जाला और दिहल जाला।
0: हमन के ओहर के गतिविधि आप बता दिल, हमन के हर के गतिविधि आप लोगों के बता दिल, हर के मौसम कैसन बाटे कैसन हो रहा बाटे आए वाला दिन में। अब लगभग हमारे ख्याल से जहाँ तक लगता है असोज भर जो कह दिला ठंडी गर्मी रही ना तो करे बाद में जाड़ा लगे लगी। आप लोगों के इतना घामे में गर्मी हो रहा बाटे और पंखा भी चल बाटे राति में, केहू ए सी के तरह सुतत बाटे केहू ए सी चलावत बाटे पंखा चलावत बाटे। आपके खातिर मोबाइल नंबर वह मोबाइल नंबर हो बहुत लंबा समय से मन के नंबर यूज करत आवत बाटे चारों दिन लगातार हो गया 98210551581 आपके खातिर खुला कर गया बाटे हमन के डायल कर सकल जाए अभिनव कर में फोन लाइन में कर सकते हैं आजकल मैंने। हेलो नमस्कार।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम सबसुद्दीन जी।
2: वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। और हाल खबर बताओ जा।
2: सब बनिया बापन बता दी
1: एकदम हमन के एकदम अच्छा बाटे। खान पीन हो गया आपके?
2: हाँ खान पीन हो गए आज तक मेला वाला बात घर ही दानी
1: एकदम का के बैठल बड़ी जा।
0: अब हमन के नॉल प्राची हम देखल लेते बिहान अतवार और सोमवार के दो दिन मेला लगी बाबा बरदगोरिया धाम में, वहाँ भी अगर आवे सकल दे जरूर प्रयास कर ले। और कहल जाता हमन के आज के ओवर के गतिविधि सुना जाता ओवर के हाल खबर सुना जाता 12 परसा और के
2: सब बढ़िया बाहर
0: एकदम
2: खान पीन हो गया अपने लोगों के बताई
0: एकदम उन लोग हो गए बेटा कथी सुनावल जाये
2: कथी कथी सुनावल जाये
0: सारी चुटकीला लेख रचना लेकिन अभिनव शायरी कोनो भी संगति आज के दिन में नहीं बोलत
1: अपन साथी संगरिया लोगन के भी समझना समर्पण कर सकल जाये।
2: हाँ समझे समझ सके अपने लोगन के साथी लोग सबसे पहले अपने के तीन के सुना दी विनोद पंडिया जी के तीन जी के पार्वती जी के सुना दी सीता जी के अपने तीनों वाला सब साथी लोग सुना दी
1: एकदम आए वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई। चलो नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्कार।
0: हम उनके शमसुद्दीन अंसारी परसवा परसा 12 परसा से जो उनकी सहभागिता दिला ना बहुत लंबा समय से उन्हों खून आवत और पहले ना आवत रहा अभी ना आ रहा बटे जब से हमारे कुछ ऐसे भैल जानते भाई जब का है ऐसे का है के का हो जाए का हुई कैसे ना हुई केहू को मालूम नहीं हो पावला। चल जा ऐसे बाटे अब लगभग 5-6 महीना लगभग हमके लग गए अभी नवा फिर से आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए लगनी। आप डायल कर सकल जी आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कर गए बटे 98210551581 आप डायल कर दी तब हमन से बातचीत करे कौशन मिली। आज शनिचर के दिन फुर्सत के दिन में ढेर जना से बातचीत करे को मिला और सारी चुटकीला लेख रचना के साथ में आप लोगों के संगतिया इनके भी समझाना समर्पण हमन के करावत बाड़ी जा
1: एकदम एकदम। और आप सबके इंतजार में मन के बैठल बड़ी दिखल देते घड़ी में 11:36 हो गए बाटे हमन के अंतिम व्यवसायिक विश्राम के भी समय आ रहा बा लेकिन हमन एक जना से और बातचीत करल जाए फोन डाल करल जाए 98210551581 तब आपसे हमन से बातचीत हो सके। और हमन के आपके सहभागिता में मन के एक शायरी चुटकीला लेख रचना सुनल जाला फोन डाल जरूर करल जाए 98210551581।
0: हमन के कह देना अभिनव कार्यक्रम में हमन के दूजना सहकर्मी संगतिया बानीजा सुरेश यादव और अपसना खातून जी हमन के प्राविधिक में बढ़ के साथ दे रहा बना हमन के सहकर्मी संगतिया ही हमारे कार्यक्रम में वो भी चलावना हमारे सतही चलावना और कब नहीं रहने अकेलो चलावना नहीं तो और के साथ भी चलावना शंभु चौधरी जी। आज के दिन हमन के शनिचर के दिन में बानीजा आपके खातिर मालूम बैठे आपके मालूम बैठे बहुत लंबा समय से कार्यक्रम चलत आ रहा बैठे पश्चिम नौलपरासी के ही पहला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 MHz से बाहर बन जाता हमन के ऑनलाइन मार्फ सुन सकल जवन के मन के ऑनलाइन बैठे www.radioparasi.com लॉगिन करके कोनो भी जगह ना बोलिए सुन सकल है। और फेसबुक में जाए जाइए तो रेडियो परासी नेपाली में लिखल लाइक करके फॉलो करके वहाँ से भी सुन सकल है तो हमन के आशा और विश्वास कैले बन जा कि आप कोनो कोनो माध्यम से सुन के मन के साथ दे देता। अब कौन संगति से बातचीत करके देखा थी अब लगी नहीं फोन नहीं आवा तो 5 जना से बातचीत करे बन जा 5 जना के सारी चुटकीला 4 जना सुनी जाए 1 जना के शमसुद्दीन जी ना सुनी ना और संगतिया लोन के याद कह के जा चुकल हम अभिनव के क्रम में अब ना ही के फोन आवा तो का कर जाए का कर जाए विचार कर ही पड़ला ढेर जना से बातचीत करे का अवसर मिले आज के दिन हमन को वही से शनिचर दिन में सारी चुटकीला लेख रचना और साथ में संगतिया के समझना समर्पण कराओ दिला अभिनव क्रम में अब क्यों फोन आया और बढ़ रहे तो कल चल जाए कोई बात नहीं बेटा अभिनव क्रम में तो गीत सुना था गीत के साथ में कुछ देर छोट व्यवसायिक विश्राम विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में हमन के उपस्थित होगा कल जाए।

0: मैया
1: ए मैया
2: हजुर के भो
1: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
3: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
2: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
4: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर नेसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
2: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9800231351
5: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी
6: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा
5: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता
7: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737
8: सुनत बाड़ा हो के जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
9: हतेरिका हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया रहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
10: भाई देखा तू सब के ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
7: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
5: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी फोन 0785201046 और 0785201033
11: के भएको यस्तो नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त
12: इसुमी पहिला त मोबाइल कम चलाऊ दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या
11: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि
12: त्यस्तो होइन नि अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न
13: हो रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरवा आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन आँखामा मासु पलाएको अपरेसन बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ
2: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
13: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा सम्पर्क मोबाइल 9819069917 र 9865934254
14: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो
15: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी किनवे छावे के लेकिन
14: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा। एक बार जाके तो देखी।
2: जी हाँ, पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कैल जाला।
0: संपर्क खातिर
2: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 9834768730 और 9814960630।
16: अरे जान ले बुका हंस के गोरी जान ले बुका।
17: रउआ सब सुन रहल बानी रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: हमन के अंतिम बेर व्यवसाय विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुकल बानी जा। हमन के पांच जना से बातचीत के लिए बानी जा। आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कल गए बटे 98210551581। बहुत लंबा समय से नंबर भी प्रयोग होता आ रहा बटे आपके मन में बटे। आज शनिचर के दिन में ढेर जना से बातचीत के लिए उद्देश्य से आज के दिन हमन के उपस्थित हो गल दला। आपके आवाज़ में सारी चुटकीला लेख रचना के साथ में आपके लोगों के संगठन के संवर्धना समर्पण भी करावा जाता है। यदि आप हमन के फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 MHz से बाहर बन जाते हैं हमन के ऑनलाइन मार्फ सुन सकल ले जौन के ऑनलाइन बाटे www.radioparasi.com लॉगिन कई के और कहा जाता है फेसबुक में जा देते रेडियो परासी नेपाली में लिखा देते वहाँ से भी सुन सकल ले। लाइक फॉलो कई के कमेंट भी कर सकल ले। उनके आशा और विश्वास के लिए बन जाए कि आप कौन माध्यम से उनके साथ दिया जाता है लेकिन फोन नहीं आवाज बेटा सहभागिता नहीं मिल बैठ रहे कार्यक्रम में सुन कार्यक्रम सुना जाता हुई जरूर लेकिन फोन नहीं आवाज बेटा आपके मन में बैठे अभी ना कर हमें फोन लाइन में कौन सा दिया आज कर बनाए। हेलो नमस्कार
1: नमस्ते नमस्कार जय राम जी के सर।
0: नमस्कार क्या बेटा हाल खबर
1: ठीक ठाक बा सर अपन सुना
0: एकदम हम लोग ठीक बेटे क्या हो जाते बेटे
1: ड्यूटी
0: में आएंगे सर ड्यूटी में खान पीन
1: तो नहीं खान पीन नाश्ता पानी भर खान पीन के टाइम होता टाइम
0: 12 बजे खाना खाए जाए यानी कि
1: हाँ 12 बजे दिन ही नाश्ता पानी हो जाए तन मनी
0: चल जा ठीक बाटे। तिलौली और के का बार हाल खबर
1: तिलौली और हाल खबर ठीक ठाक बा सर धान फूटे फूटे के समय होता
0: हाँ एकदम धान तो लगभग जे पिछड़ा धान बजन पीछे होला आगे होला वो धान तो फुटबे कर देवन संभव बाटे तनी सा बेर के फुटला
1: जी सर
0: कथी सुनावल जाई।
1: अच्छा छोट के चुटकुला सुना दे थोड़ी सर
0: सुनावल जा।
1: चार तो दोस्त रहला तारो दोस्त बहुत मिलत रहला एकदम मिलत रहला तो तारो दोस्त एक जगह जम्मा भइला तो कहाँ पर एक दोस्त कहाँ पर चला गया हमरे घर एक जन कहता नहीं नहीं हमारे घर चल जा एक जन कहता नहीं हमारे घर चल जा एक जन कहता है चल जा हमारे घर चार दोस्त में एक दोस्त फर्स्ट वाला दोस्त कहता है हमारे ही घर चल जाएगा दोस्त घर और बाद में दोस्त कहता बहुत दिन में हमारे दोस्त लोगों अब सतुआ खिलाए कर लोगों के अब सतुआ लगना खीरे सतुआ उतुआ कहता बड़ा मजा आया बहुत दिन में सतुआ मिलल खाए के तो दूसरा दोस्त घर गए दूसरा दोस्त घर गेला तो वहाँ पूरी तरकारी बनैला दोस्त तो पूरी तरकारी खैला और बाद में तीसरा दोस्त घर गेला तीसरा दोस्त घर गेला तो बनैला हला खीर खीर खियेला खीर उर खैला होला तो बाद में चौथा दोस्त घर गेला चौथा दोस्त का कैला हला खसी मासु बनैला हला तो चौथवा दोस्त जो खसिया मसुआ रहे तो मसुआ मसुआ बराग भैला हला हरवे भर लेकिन ले गईला संगठियन के रोते के लगल रहते सोच भैया कहा तर देखा जा या कहला ये तो कहानी कहला हराक से हार सुलुक से झोर खैबा खा नहीं तो उठ के जो कह के अब चल गया भीतर चुटकिला खत्म हो गया
0: एकदम ये मसुआ खिया के हड्डी खिया के बहुत बेकार कह देना नहीं चलो ठीक बटे
1: हार सुलुक से झोर खा नहीं तो उठ के
0: जा जेके खाएबा खा नहीं तो चल जाए यहाँ से।
1: हाँ हाँ
0: चलो ठीक बात है। आपकी पारी बजे वाला गीत मार्फत के सुनावे की चाल जाए
1: सबसे पहले आप लोगों ने मिल के आप प्राधिक में वाली यहाँ के रेडियो परासी हो नहीं मुझके हम इनके बारह बीरगंज से बारह हम इनके विनोद तबियार जी नरेश कुशवाहा जी बारह हम इनके श्रीलाल चौधरी श्री प्रसाद चौधरी बीरगंज के जितना बारह दोस्त मित्र सब दोस्त मित्र मान प्राची बार सिकंदर प्रसाद चौधरी जनार्दन प्रसाद चौधरी बारह के कन्हैया यादव जी हम इनके बारह तीन प्रकाश चौधरी हरवनीस बारह तीसरा चौधरी गोटे गुड्डी गमिया जी बेलाटा तिलक जी पार्वती जी हम इनके अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अनिल कुमार चौधरी हमारा हम इनके आसमान चौधरी जितना सुन के साथ देते हुए सब दोस्त लोगों के मुफ्त में सुनने वाला न सुने सब
0: आए वाला दिन में फिर से सहभागिता मिली आपके छुटल दा नमस्ते
1: नमस्ते नमस्कार सर
2: नमस्ते नमस्कार डॉक्टर राय जी तिलौली से सहभागिता जना के अपन सहभागिता में बैठो एकदम छोट मीट
0: चुटकीला सुना के ना अपन संगतिया लोगन के भी याद के ना हमन के चुटकीला ये और सुने ना वास्तवमे चारो जनाके लगे त चारो जना घरे खैना, लेकिन अइसन एक जगह खाना चौथा जगह कि मासु छाँटर धैल न हड्डी भरते धन कि खाए बा खा नहीं तो जा घरे झोल खा खाए बार जा घरे ऐसे है आपका जेके अब जैसे संगतिया जगह जिगरी एकदम रह ना तू लगभग लगभग सबका एक लखिन सबके खियाओ ना, लेकिन ऐसा है क्योंकि जब बढ़िया ना रहता बेकार चीज़ खियाओ ना। अभिनव कर में आपके खातिर मोबाइल नंबर खुला कर गिल बाटे 98-210-51-581 आप डायल कर देते हमसे बातचीत करने का अवसर मिली। ये फुर्सत के दिन में ढेर जना से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो गया कि हमन के सोचल रहा, लेकिन जहिया फुर्सत के दिन रहा वही दिन में फोन आ गया वाला। आप यदि हमन के फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 मेगाहर्ट्ज़ से बाहर बन जाते हमन के

0: मनोरंजन के आधार सामुदायिक रेडियो प्रासी जिला के ही पहला रेडियो है आपके मन में है। एक बाद दो भी सामुदायिक रेडियो बाटा प्राइवेट रेडियो भी एक मन के पोखरा पालनी बाटा आपके मन में है। बहुत लंबा समय से वो भी स्थापना भर बाटे लेकिन कार्यक्रम ऐसा चल रहा तरीका के कौन रेडियो अभिनव ना चला रहा बटे पहले चलावत रहें लेकिन अभिनव क्या बटे एक तरीका के कार्यक्रम केहू ना चला रहा बटे अभिनव के क्रम में हमन के ही गीत बहार कार्यक्रम चलावत आवत बन जा फरक दिन फरक विषय वस्तु के साथ में आप लोगों के बीच में हमन के उपस्थित होकर बाड़ी जा
1: फोन लाइन में कौन संग्री आ चुकल बने। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते।
0: हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते। हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते काज के बोल रहे था हमारा रोड से नगेंद्र यादव। नगेंद्र यादव की क्या हाल खबर।
1: नगेंद्र जी रेडियो सुनो थकल जाई ते तनी साइड होके बात करल जाई हमन के इको आवा था।
2: ठीक है सर हाल खबर सब अपन सुनावल जा बढ़िया से आप सब के
0: अपन जगह बता दे कौन जगह बता रहे
2: हम रोड पुराम पुराम चौके नगेंद्र यादव
0: ए हम रोड से
2: हाँ जी सर
0: चलो ठीक है खान पीन हो गए
2: हाँ हो गए सर खान पीन
0: कथी सुनावल जाए
2: अगर
0: सारी चुटकिया लेख रखना कथी सुनावल जाए
2: ठीक है सर सुनावल जाए
0: सुनावल जाए
2: मुझे अपनों ने लूटा गौरम का आदम था
0: एकदम जैसे जेके विश्वास कर देला वह विश्वास नहीं कर रहा नहीं अपन संगतिया लोगन के अबकी पारी बजे वाला गीत मार्फत याद कर सकल
2: हाँ संगतिया सबके रेडियो फरासी आप सबके सबके पूरा देश सुनत सबके लिए एक थी
1: सर माय वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई छोटा जा नमस्ते
2: नमस्ते
0: हमर के नगेंद्र यादव हम रोड से सहभाग दे देना है अभिनवा के क्रम में अपन शायरी के साथ अपन संगतिया लोन किया भाई की जा चुकल बना अब कार्यक्रम में हमन के विदा ले के परी कार्यक्रम से आज सात जना लाना से बातचीत के लीजा सात जना में इक्के जना भर शायरी चुट रहा लेख रहा ना सुन अपन संगतिया लोन याद की जा चुकल आज के दिन से हम कार्यक्रम संचालक सुरेश यादव
1: और हम अपना खातून आप सबसे विदा होए के चाहत बनी लेकिन
0: प्राविधि में जैसे सात जना मन के सबू चौधरी जी के विशेष विशेष धन्यवाद दियात आज के दिन से भी गीत भी बजा के साथ देना अभिनवा क्रम में हमन के दोनों जना विदा होकर बन जाए नमस्ते जयराम जी की।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीस के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। सब जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45 860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए
1: के
0: चाहिए।
1: सही कहला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनौले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वॉशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गांव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
0: सफेद वॉशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
1: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
3: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
4: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
5: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
3: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559974744000 और 9559944536।
6: म सानै उमेरमा बेचिएँ, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किएँ बाँचेर। तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु, न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ। यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
7: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे। झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति। जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु दिदी।
8: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
9: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
8: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
10: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
11: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
10: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य our.ors international।

0: जो कोही को इच्छा सुन्दर घरको लागि सुन्दर रंग
1: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेन्ट्स।
0: इन्डिगो पेन्ट्सको आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिङ कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी।
1: इन्डिगोको मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रङ रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
0: इन्डिगो पेन्ट्स सदा बसन्तम।
2: घरलाई कस्तो रङ सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
0: त्यति मात्रै कहाँ हो र हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
1: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
0: परासीमा घर रङ रोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने एकमात्र स्थान
3: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
2: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी। सम्पर्क 0 78 5 20 7 47 र 98 5 70 46 7 47।
4: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
5: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
6: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 देखि 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ। साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
4: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्धचोक परासी। सञ्चालक शुभम यादव। फोन 0 78 5 90 6 99 र मोबाइल 98 5 70 47 282।
7: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
8: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी कि नवे छावे के, लेकिन
7: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
9: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदार।
7: मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना आ नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
9: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला।
10: संपर्क खातिर
9: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने। प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 98 4 78 68 730 और 98 1 94 60 630।
11: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
12: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
11: इतने भर नहीं, सच साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
10: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 9861745737।
13: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागी ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 9857023031।
14: नमस्ते, म डम्बर नेपाली, सुन्दै गर्नुहोला रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
1: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
0: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
2: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।
3: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए चाहिए।
4: सही काला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनौले के साथ सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
0: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
3: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
4: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शोभा बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर इहे भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
1: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
2: सुनत बाडा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
3: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो? चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
4: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
5: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए बात 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
2: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559445036।
6: के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
7: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
6: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पुरा गर्दैछौ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पीटीई र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
7: थप जानकारीका लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, रामग्राम 5 परासी अदालतको ठिक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 9510038135।
8: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
9: ए बाबु, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी चिनवे छावे के, लेकिन
8: का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी, यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला, एक बार जाके तो देखी।
7: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
10: संपर्क खातिर
7: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 9874768733 और 9914960630।
11: या जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप पलाइन जान्छ, एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
12: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो, त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता?
13: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
12: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ।
0: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामगरामपास परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटरको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 9815640092 र 9828364060।
10: नमस्कार, म लोकदोरी गायिका

पाउनलाई अत्यन्त कठिन के हो? उत्तर: तत्त्वज्ञानी गुरु, सत्सङ्ग, ब्रह्मविचार, सर्वस्व त्याग र कल्याण रूप ब्रह्ममा स्थिति। अन्तिम प्रश्न उत्तर आजलाई: जित्न सबैलाई कठिन के हो? जित्न सबैलाई कठिन के हो? उत्तर: कामदेव, अर्थात् भोग इच्छा। प्रश्न: जित्न सबैलाई कठिन के हो? उत्तर: कामदेव, अर्थात् भोग इच्छा। प्रश्न: जित्न सबैलाई कठिन के हो? उत्तर: कामदेव, अर्थात् भोग इच्छा। यो प्रस्तुति हो नेपाल भैरव रूपन्देह एफएमबाट, पाल्पा तानसेन सुरुङ एफएमबाट, बुटोल मुक्ति एफएमबाट, रेडियो परासी एफएमबाट प्रस्तुत यो मोक्षपर संस्था अखण्ड सेवा केन्द्रबाट। प्रस्तुतकर्ता हो अध्यक्ष अद्वैत प्रदीपबाट। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ।

0: उन्नत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
1: हतेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
2: है देखा तू सब के ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
3: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
4: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी फोन 078-520-146 और 078-521-033
5: जता दौड़िए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन रेट पनि त्यस्तै महँगो
3: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन
6: हजुर सुनिल हार्डवेयर मा गएपछि घरको चिन्ता खतम
5: हामी कहाँ छड सिमेन्ट गिट्टी बालुवा रंगरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ सेनेटरी प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर
6: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली रामग्राम 3 परासी सुनोवल रोड पुरानो सिनेमा हलको अगाडि फोन 078-520-881
5: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ सम्पर्क फोन 078-590-588
4: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी
0: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहताई सा साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा
4: इतने भर नहीं सब साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता
3: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 98-671-45-737 यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम को जरूरी सूचना
6: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूप में बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरुको हकमा यही चैत्र मसान्त सम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधन मा लाग्ने कुल जरिवाना को 50% छुट दिइनेछ साथै सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण तथा कार जीप ट्रेक्टर रिक्सा टेम्पो मोटरसाइकल स्कूटी को लाइसेंस पनि वितरण गरिन्छ
3: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम
6: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस् हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ स्थान ओमाइल स्टोर रामग्राम 5 परासी बाईपास रोड हाट बजार नजिकै संचालक वीरेन्द्र यादव सम्पर्क नम्बर 98-570-23-031
7: या जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप पलाइन जान्छ एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा
8: ठिकै भन्यौ अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि के को चिन्ता
9: हजुर जहाँ तपाईँले गिजर हिटर इन्भर्टर आइरन राइस कुकर पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ
8: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ
10: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर रामगरामपास परासी थाना रोड ग्लोबल कम्प्युटरको ठिक अगाडि प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता मोबाइल 9815640092 र 9828336460
11: बस ट्रक कार होस् वा मोटर बाइक टायर सधैँ सिएटकै
12: हजुर जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स भूमहिमा बलियो टिकाउ अनि बढी माइलेज भएको सिएट टायर इन्भर्टर ब्याट्रीहरू साथै आकर्षक सटिङ सुटिङका लागि पनि एकै ठाउँ
11: जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स सुनवल 12 भूमहिलाई सम्झनुहोस् सम्पर्क मोबाइल 9857045155
13: लेकिन
14: का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिला था।
0: जी हां, धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी फ्रिज कूलर पंखा एसी हीटर लगाए के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
1: संपर्क धीरज ट्रेडर्स रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल मोबाइल 9847220 और 9815220।
15: मैया ए मैया
16: हजुर के भो
15: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
17: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
16: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
18: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर नेसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
16: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9803231351

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: ए हेलो, दिखता नहीं है क्या?
1: यही तो मेरा स्टाइल है बाबू।
2: ए हीरो, जरा होश में।
1: का कहलू? होश में? अरे होश तो हम उड़ाते हैं, जब आते हैं जोश, जब आते हैं जोश, जब आते हैं जोश, जब आते हैं जोश, जब आते हैं जोश।

0: लौ न लौ लौ चट्याङ पर्न आँटो सबैजना यता आऊ त यता यो ठुलो रुखको फेदमा बसौ।
1: हुन्न हुन्न, चट्याङ पर्दा रुखको फेदमा बस्नु हुँदैन, त्यहाँ त झन् जोखिम हुन्छ।
2: हो र?
1: हो नि, चट्याङ पर्दा रुख मुनि र बिजुलीको खम्बा वा अग्लो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, सुक्खा ठाउँ र घरभित्र झ्याल ढोका लगाएर बस्नुपर्छ।
2: अनि चट्याङबाट जोगिन अरू के गर्नुपर्छ?
1: चट्याङ पर्दा वा पर्ने सम्भावना हुँदा टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, माइक्रोओभन जस्ता विद्युतीय सामग्रीमा जोडेको तारको स्विच बन्द गर्नुपर्छ। यदि विद्युत बन्द गरिएन भने चट्याङ पर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
2: चट्याङ पर्ने जोखिम कुन कुन समयमा बढी हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न।
1: धेरै जसो चट्याङ चैतदेखि जेठ महिनामा र सामान्यतय दिउँसो 3 बजेपछि बढी पर्ने सम्भावना हुनाले यो समयमा सचेत रहनुपर्छ।
3: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
4: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
5: सही काला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनौले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
6: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
4: पुनश्च सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
5: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
7: ए चाचा देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौकत।
8: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल तो हमरो बा, आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
9: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा, अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
10: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मास उभरल टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँस के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कई जाला।
6: संपर्क भगवती नेत्रालय, रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड, आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98672 और 98572।
11: सुनत बाड़ा हो, किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
2: हद तेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया रहे आँस गिरता, अदानी को साफ से नाई फरियाता।
10: भाई देखा, तू सबके ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
6: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़-मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
8: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ, डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।
12: हद तेरी का, लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सकाई, यही में मोबाइलो फूट गई बा। लेकिन
6: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
13: जी हाँ, धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में LED, TV, फ्रिज, कूलर, पंखा, AC, हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
2: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98472220 और 98015220।
14: डेंगु रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगु रोगको महामारी धेरै जसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिना साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
15: डेंगु रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुल

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: बरासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली बरासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता है सत साहेब हॉस्पिटल बरासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा
0: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737
3: अंकल नमस्कार बहनी ब्याह कर दुआरा का
4: हाँ बेटी बिटिया सियान हो गई अब समय में ब्याह हो जाते
3: नहीं अंकल पहले जैसा समय अब नहीं रह गई अब ते 20 वर्ष ने पुग के ब्याह करे के और कराए के नहीं मिले कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के पड़ी और उतना भर नहीं छोटहन उम्र में ब्याह कर दे के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हो
4: ऐसा बात बाटे
5: हाँ हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल
2: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिवाना होखेला यह नाते अगर ऐसन गतिविधि हो तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश

0: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
0: चला, इतना बढ़िया सोच तुहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
2: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी सावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
3: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
4: चाची, रूमवा बहुत सफा बाहो और सुगंध भी बड़ा खुशबूदार आवता।
3: हाँ बाबू, महावीर इंटरप्राइजेस से टाइल क्लीनर और रूम स्प्रे लगवैली है, बहुत बढ़िया बटलही बा।
5: जी हाँ, आप सब भी घर सफाई के खातिर वाइपर पोछा टाइल क्लीनर रूम स्प्रे हार्पिक हैंड वॉश टॉयलेट ब्रश कार्यक्रम भोज के खातिर सिल्वर पाउच नेपकिन पेपर गिलास प्लास्टिक के झोरा डाइनिंग टेबल कुर्सी स्टूल बाल्टी ऐसे गल्ला के काम करत के बोरा सीए वाला सुतरी सुज्जा परखी चोंगा पहले के साथ किचन संबंधी कुकर डेक्ची थरिया प्लेट गिलास लगात के सामान खातिर जरूर समझल जा।
6: संपर्क के खातिर महावीर इंटरप्राइजेस रामग्राम 5 परासी अग्रहरी पेट्रोल पंप के पूर्व साइड फोन 0785201 और मोबाइल 9857745766।
7: ए सुन न, खाजा खाना जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
8: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
7: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
9: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक केराका विभिन्न परिकार ससेज भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
8: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआर हुलास अटोक्राफको ठीक अगाडि। मोबाइल 9857046130 र 9804400067।
3: के भएको यस्तो, नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
7: ए सुमी, पहिला त मोबाइल कम चलाऊ, दोस्रो आँखा चेक गराइहाल क्या।
3: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
7: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
9: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरव आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
8: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
9: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 9819069917 र 9965934254।
8: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 9857023031।
10: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज प्रगति को संवाहक। रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज प्रगति

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिर बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नहीं, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब
3: हैप्पीनेस togetherness indeed indeed
4: take me
3: far there right here
4: take me wi-fi internet
3: MPLS data connectivity cable internet serves you always
4: take me
3: with you always everywhere
4: contact 0785700073

0: मैया ए मैया
1: हजुर के भो
0: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
2: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
3: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
4: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर नेसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
3: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9803231351
5: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना
6: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ साथै सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण तथा कार जीप ट्रेक्टर रिक्सा टेम्पो मोटरसाइकल स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ
5: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम
7: तहके मालूम बा हो मैडम कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए चाहिए
8: सही कहला हो सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथ सुगंध भी बहुत अच्छा देला
5: जी हाँ चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सरफ जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा
7: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा साथ में 4 केजी सरफ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री
8: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84
9: अंकल नमस्कार बहनी ब्याह कर द्वारा का
10: हाँ बेटी बिटिया सियान हो गई अब समय में ब्याह हो जाते
9: नाई अंकल पहले जैसा समय अब नाई रह गई अब ते 20 वर्ष ने पुग के ब्याह करे के और कराए के नाई मिले कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के पड़े और उतना भर नाही छोटहन उम्र में ब्याह कई दे के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी होई
10: ऐसा बात बाटे
11: हाँ हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल
5: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिवाना होखेला यह नाते अगर ऐसन गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए इंद्रिणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले रातको 8 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।
4: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज प्रगति को संवाहक।
5: इट्स 8 पीएम।
6: हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन। समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। थाह संचार नेटवर्कमा यो हो नेपाल परिवेश, समयको आवाज। समयको

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास.
1: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज.
2: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध. आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ. साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ. महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ.
3: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
4: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
3: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी. यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा. वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला. एक बार जाके तो देखी.
5: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला.
6: संपर्क खातिर
5: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने. प्रोप्राइटर चंदू चौहान. मोबाइल 9843768730 और 9814960630.
7: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्. हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ. स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाईपास रोड, हाट बजार नजिकै. सञ्चालक वीरेन्द्र यादव. सम्पर्क नम्बर 9857023031.
8: डाक्टर विनोद नेता कन्डेल, आँखा अस्पताल परासीको अनुरोध.
9: यस आँखा अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञद्वारा दैनिक आँखा चेक जाँच गरी मोतियाबिन्दु, मासु पलाएको, परेलाको समस्या आदिको नियमित शल्यक्रिया,
8: साथै मोतियाबिन्दुको अत्याधुनिक प्रविधि फेको मसिनबाट फोल्डेबल लेन्स राखेर शल्यक्रिया गरिँदै आएको र शल्यक्रिया पश्चातको जालो अत्याधुनिक याग मेसिन लेजर विधिबाट सफा गरिने सुविधा सहित चेक जाँच पनि भइरहेको छ.
9: हो, त्यसैले समयमै आँखा जाँच गरौँ र दृष्टि गुम्नबाट बचौँ.
8: अनुरोधक नेपाल नेत्र ज्योति संघ, डाक्टर विनोद नेता कन्डेल, आँखा अस्पताल परासी. फोन नम्बर 0785201146 र 0785211033.
10: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्यो. एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो.
11: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
7: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम.
10: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ. अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर.
7: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि. फोन 0785208081.
10: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ. सम्पर्क फोन 0785905088.
12: मेरो प्रश्न चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई. माननीय मन्त्रीज्यू, सरकारले नीति बनाउँदा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा के सोच्नु भएको छ?
13: मेरो प्रश्न सांसदज्यूलाई. हजुर भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभयो, सुरुमा त बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ. अस्ति चुनावमा त तपाईँले धारा, बत्ती, बाटो बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो. तर संसद त नीति बनाउने थलो हो नि सांसदज्यू. तपाईँले जनतालाई दिएको आश्वासन अब कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? अनि अब बन्ने नीतिमा चाहिँ म जस्ता युवाको सहभागिता कसरी गराउने सोच्नु भएको छ?
14: मेरो प्रश्न मेयर साहबलाई. अहिले स्थानीय सरकारले गर्ने काममा लैङ्गिक संवेदनशीलता र युवा सहभागिताको बारेमा कसरी सोच्नु भएको छ?
15: मेरो प्रश्न मन्त्री र सांसदज्यू दुवैजनालाई. अहिले सुशासनको सवालमा युवाको सहभागिता विषयमा कसरी सोच्नु भएको छ?
16: सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म
6: नीतिदेखि विकाससम्म, विपद जोखिम न्यूनीकरणदेखि सुशासनसम्म युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे प्रश्न गरौँ। तपाईँको एउटा प्रश्नले नीति बदलिने र सुशासन कायम हुनेछ।
16: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
17: ए चाचा, देखा न हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो? हमके तो एकदम धुधुराह लौकत है।
18: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा। आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
19: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा? अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
20: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतियाबिंदु आँख में मांस उभरल ट्रेडमेड आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
21: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 9876228015 और 9857022015।
19: अंकल नमस्कार, बहनी ब्याह कर दुआड़ा का?
18: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में ब्याह हो जाते।
19: नहीं अंकल, पहले जैसन समय अब नहीं रह गई। अब ते 20 वर्ष ने पुग के ब्याह करे के और कराए के नहीं मिली। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के पड़ी और उतना भर नहीं। छोटहन उम्र में ब्याह कई देत के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हो।
18: ऐसन बात बाटे?
22: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
21: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 कैद जरिवाना होखेला। यह नाते अगर ऐसन गतिविधि हो तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।
2: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि ₹1,00,000 को दुर्घटना बीमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 0785201124 र 9842799011 सम्पर्क गर्नुहोला।

0: प्रयोग कइल जा और नेपाली होली कह के पहचान देखावल जा।
1: उत्पादक साफी सरफ उद्योग माया देवी गाँव पालिका एक पाकड़ी कपिल वस्तु संपर्क नंबर 98264-48200।
2: अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोरूम परासी में
3: तपाई हाम्रै सुन्दर नगरी परासीमा वातावरण मैत्री दुई पाङ्रे इलेक्ट्रिक स्कुटर को शोरूम खुलेको छ। स्कुटर खरीद गरी अब पेट्रोल भर्ने र सर्भिसिङ गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्।
2: साथै एक पटक चार्ज गरेपछि 100 किलोमिटर सम्म मजाले चढ्नुहोस्, त्यो पनि 70 किलोमिटर प्रति घण्टा सम्मको स्पिडमा।
3: थप जानकारी का लागि गीता अटोमोबाइल रामग्राम पास बाईपास रोड हाट बजार नजिक परासी। संपर्क मोबाइल 98-570-46-865 र 98-069-58-118।
2: अब दायाँ बायाँ हैन, इलेक्ट्रिक स्कूटर नै रोजौ।
4: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
5: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
4: चला, इतना बढ़िया सोच तोहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
6: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
7: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120-42-5131।
8: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा।
5: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। छाती मुटु सुगर थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म।
9: हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
10: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमील मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म।
11: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि।
10: र भैरहवा मेडिकल कलेजका नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
12: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे, हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर तथा नर्मल अपरेशन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ।
8: सम्पर्क जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक रामग्राम 5 परासी। फोन 0785-20-746 र मोबाइल 9847-41-140 छ।
13: ए सुन न, खाजा खान जाउँ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने।
14: जान त जाउँ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाउँ न।
13: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाउँ न त आरआर।
15: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
14: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआर हुलास अटोक्राफको ठीक अगाडि। मोबाइल 9857-46

0: 41130 र 98044-0067।
1: अरे जान ले बुका हंस के गोरी जान ले बुका
2: रउआ सब सुन रहल बानी रेडियो पारासी 90.2 MHz।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजना हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।